0: रोग विशेषज्ञ डाक्टर महेश चौलाका द्वारा पनि सेवा दिइरहेको जानकारी गराउँदछौ।
1: सम्पर्क वाना हस्पिटल प्राली वीरेन्द्रनगर एरी चोक देखि 200 मिटर उत्तर तर्फ सुर्खेत। फोन नम्बर 0383-590-693।
2: रेडियो भेरी एफएम 98.6 / 2.7 मेगाहर्ट्ज।
3: एक्सट्रीम एनर्जी ड्रिंक टाइम टेक अहिले ठीक 5 बजे को छ।
4: एक्सट्रीम एनर्जी ड्रिंक टेस्ट द डिफरेंस फील द एनर्जी।

0: रेडियो भेरी एफएम 98.6 वैक्सी 2.7 मेगाहर्ज
1: एक्सट्रीम एनर्जी ड्रिंक टाइम चेक अहिले ठीक 5 बजेको छ
2: एक्सट्रीम एनर्जी ड्रिंक टेस्ट द डिफरेंस फील द एनर्जी